0: गुरु प्यारे गुरु स्वरी गुरु सत्संग जी इतनी आगे प्रवान करने दासां पास होइयां बेअंत भुलां दी खिमा। अगला प्रोग्राम स्टेज सेक्टर साहब पासों सरवण करो दासां नूं इत्थे बुलाओ फते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: ये हन बहुत ही सत्कारयोग सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे पवित्र दरबार दे कीर्तनीय सिंह रागी भाई सुखजीत सिंह जी कोहाड़ का हजूरी रागी सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जिन्हां ने आप जी नूं अमृत गुरबाणी आरती आरता शब्द कीर्तन सरवण करवाया है। संगतां वालों जथे का बहुत बहुत धन्यवाद। साध संगत जीओ मेरी पीरी दिवस नूं समर्पित विशेष शाम दे दीवान चल रहे ने, ढाडी दरबार चल रहे ने जो कल तक चलणगे। 23 जुलाई तो लैके 2 अगस्त तक आत्म रस कीर्तन दरबार सजाए जाणगे। 28, 29 ते 30 जुलाई 3 दिन 31 रागां दे आधार दे उपर कीर्तन राग दरबार सजाया जाएगा। समा शाम दे 6 तो रात दे 9 बजे तक दा होया करेगा। 2 अगस्त दिन एतवार सवेरे 6 बजे अमृत संचार होवेगा। अमृत पान करके गुरु महाराज जी धीआं पुत्र सजो। हुण बहुत ही सत्कार जो ज्ञानी कुलदीप सिंह जी विद्यार्थी दमदमी टकसाल उन्हां तों चल रिहा लड़ीवार इतिहास कथा विचार सरवण करदे आ। साध संगत जीओ संगतां नूं बेनती है बीबियां नूं के लंगरां विच पहुंच के लंगर विच पहुंच के प्रशादे बनाउण दी आप जी सेवा जरूर निभाया करो। तो साध संगत जीओ दूसरी बेनती है कि जदों भी आपां कड़ाह प्रशाद दी देग लैंदे आ इक थां ते बैठ के आपां देग छक लिया करिए जी। छकदे जदों आपां जाणदे आ थां थां दे उपर प्रशाद दे किण के डिगदे ने ते बेअदबी हुंदी है। लंगर विच वी बेनतियां आईयां ने कि वी जदों आप जी प्रशाद छक लैंदे आ हथ जूठे ही कई संगतां सुच्चियां बर्तनां नूं जा के लाउंदियां ने उहनां संगतां नूं बेनती है अपने हाथ एक बार जरूर धो लिया करो जी। चल रहा लड़ीवार इतिहास कथा विचार दे नाल आपां जुड़दे हां जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
2: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।

साध संगत जी सत गुरां दी अपार कृपा बख्शिश रहमत दा सदका संध्या वेले दे सजे होए दीवाना अंदर सत संगत दियां अमोलक घड़ियां दा आनंद माण रहे हो। गुरु घर दी मर्यादा अनुसार लड़ीवार गुर इतिहास दा समा होया है।

महाराज जी श्री गोविंदवाल साहब दी धरती उपर वस रहे ने ते जो सच्चे सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जिया ने मुक्ति सरोवर बौली साहब दी सेवा करवाई सी उसदा महात्म दसदे ने के किस प्रकार उथे 84 पौड़ियां दे उपर एक एक पाठ जप जी साहब दा पढ़ना है, इशनान करना है, वड्डा महात्म है। जो शरदा भावना दे नल करदे ने उन्हां दा लोक परलोक सवर जांदा है। और जो धन गुरु अमरदास महाराज जिया ने फिर अगे भी मुक्ति सरोवरां दी सेवा करवाउण दी बाबत वचन कीते सन, अमृतसर साहिब दी सेवा चल रही है, तमाम संगतां उथे भी सेवा करदियां हन ते सच्चे सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी सचखंड प्याना कर गए ने। उस तो बाद साहिब श्री गुरु रामदास महाराज गुरता गद्दी ते सुभाए मान हन, चारे दिशावां तो पातशाह दे दर्शना लई संगतां चल के आउंदियां, समरथा अनुसार दर्शनी भेटा लै के आउंदियां ने। आओ किस प्रकार दमदमी टकसाल दे पंजवें मुखी ज्ञानी संत सिंह जीआं दे विद्यार्थी कवि संतोख सिंह जी गुरु नानक दे घर दा पवित्र इतिहास मोतियां दे वांग परो रहे ने।

0: आप जी कर ऐसी मर्यादा कर लवा।
1: निवे जगत कर कै बड़ प्रीत।
0: आप जी लाहौर दे अंदर चलो न, अपने घर विच चरणा नू

कोया दानश मंदा मोल कोया देखे सबर फकीरी दे बैठे दो शमशीरा पाके मालक मीरी पीरी दे बैठे दो

0: लिखे कड्याणा गुरु कहन सब नू जहांगीर से कुबदले दी अगनू लिखे कड्याणा गुरु कहन सब नू जहांगीर से कुबदले दी अगनू
1: जैसे नू ही तैसा होने पर आवांगे जैसे नू ही तैसा होने पर आवांगे चंदू चंदरे नू सब के सिखावांगे चंदू चंदरे नू सब के सिखावांगे।

0: पूरा हो गया। पूरा किस तरह होया? मर के ते कोई पूरा नहीं होंदा। हां पूरन विच जुड़ के ही कोई पूरा हो सकता है। ते पूरन केवल परमात्मा है। आद पूरन, मद पूरन, अंत पूरन परमेश्वर। उस पूरन विच लीन होके ही मनुख पूरा होंदा है। और पूरा केवल परमात्मा है। पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जांका नाव, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। इस अवस्था दे पहुंचे हुए मनुख नूं असीं कह सकदे हां पूरा हो गया है, मुकम्मल हो गया है। ए इंसान जमया अधूरा सी, जीविया अधूरा सी, भजन ने, सिमरन ने, साधना ने इस नूं पूर्ण कर दिता है, मुकम्मल कर दिता है। इतनी ते विज्ञानक भी गल मनदे ने कि मनुखी बच्चा अधूरा जमदा है। मुंह दे च दंद नहीं ने, पैरां दे चलण दी शक्ति नहीं है, हाथां विच पकड़ दी कोई ताकत नहीं है, जबान विच बोलन तक दी भी शक्ति नहीं है, बुद्धि विच सोचन तक दी भी शक्ति नहीं है, बिल्कुल अधूरा जमे है। सहजे सहजे कादर करीम परिपूर्ण परमात्मा दी सहजी ये प्रकृति उहदे शरीर नूं पूरा कर दी है और मुकम्मल हो जाता है। 14-15 साल तक पैरां दे चलन दी शक्ति आ गई, हत्थां दे पकड़न दी शक्ति आ गई, जबान दे बोलन दी शक्ति आ गई, पूर्ण तौर ते बुद्धि पूर्ण तौर ते सोचन भी लग पे और दंद मिल गए, वस्तु नूं चबाउण दा भी पूरा बल मिल गया। लेकिन चेतना ते बंदे दी उस दिन पूर्ण होंदी है, शक्ति ते बंदे दी उस दिन पूर्ण होंदी है जद पूर्ण नाल जुड़दी है। ते पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ईश्वर है। कई दफा बंदा बाहरों पूरा हो जाता है, अंदरों अधूरा रह जाता है।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudel Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudel Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudelbaudgroup.com.
3: गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज गुरु हरगोबिंद साहिब दी 6वीं संतान ने, 6वीं संतान तां शब्द वरते है, हजूर दे आगमन तो पहला गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दे 4 बेटे और एक बेटी है, बाबा गुरदित्ता जी, बीबी वीरो जी, बाबा अटल राय जी, बाबा सूरजमल जी और बाबा अणी राय जी। गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी का आगमन श्री अमृतसर साहिब की धरती ते होया है। हजूर महाराज जी का जिस जगह ते आगमन होया उथे गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव ते गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने श्री अमृतसर साहिब रहिंदियां अपनी रहायश रखी ते उस स्थान नूं असी शब्द वरतने गुरु का महल। अमृतसर साहिब दी धरती ते उस गुरुद्वारे दा नाम गुरु का महल है। गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी दा आगमन अमृत वेले होया है। इतिहास कहिंदा है कि सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज दरबार साहिब आसा की वार दा कीर्तन सरवण कर रहे सन ते उस वक्त समाप्ति वेले सेवक ने जाके बेनती कीती, महाराज आप जी दे ग्रह विखे साहिबजादा जी दा जन्म होया है। महाराज है गुरबिलास पातशाह 6वीं भी जेडे शब्द लिखे ने, महाराज जी ने अपने इस बेटे नूं हत्थां चुकिया उस वक्त जेड़े शब्द कह पावे असी श्रद्धा नाल देखांगे हर गल स्वीकार होवेगी, जे तर्क नाल हर गल नूं कट्टन दा यतन करांगे ते कुछ भी सिद्ध नहीं होवेगा। महाराज जी ने अपने बेटे नूं हत्थां च पकड़िया, इतिहास कहिंदा अपना सीस चुकाया। भाई बिधी चंद जी पुछदे ने, महाराज इस पुत्तर नूं इन्नी नीज नाल देखिया ते सतगुरु दे जेड़े शब्द सन ओ ए सन, ए मेरा बेटा दीन रखक संकट हारन। कुछ विद्वान कहने दीन बंधु, एदा मतलब गरीबां दा रखवाला है ते जितनी मर्जी वड्डी तो वड्डी मुसीबत आ जाए सच एवे मेरा पुत्र वड्डे तो वड्डे संक

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਇਹ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਹੈ। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाति पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे कार औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन, इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश कर दियन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटे जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना ता मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रखिया दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी पर एक

बोध तो बिना है धार्मिक इकट्ठ धर्म दी समझ कोई नहीं। जैसे कोई समाजिक इकट्ठ होवे ते समाज दी समझ ही ना होवे, मां है पिता है कि चाचा है ताया है पुत्र है भैन है भरा है ये मामे ने मासियां ने इसकी समझ ही ना होवे। बहुत वड्डा समाज दा इकट्ठ होवे ते समाज दी समझ ना होवे ओ इकट्ठ सारे दा सारा बेमैने। बड़ा भारी धार्मिक इकट्ठ होवे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे च धर्म दी समझ ना होवे धर्म दा बोध ना होवे। और ये गल कबूल कर लेनी चाहिए है जमीन देते जितने धार्मिक मंदिर ने इतने भी धार्मिक मनुख नहीं ने, नहीं जितनिया मस्जिद ने जितने मंदिर ने जितने गुरुद्वारे ने जितने जैन मंदिर ने जितने बौद्ध मठ ने जितने सनातन मंदिर ने जितने चर्च ने जितने सिनेमागॉग ने इन्ने धार्मिक मंदिर और हर शहर दे सैकड़े धार्मिक मंदिर हर शहर दे कोई धार्मिक मनुख नहीं आउंदा, नहीं आउंदा। चंदन तरना बन बन साधना पुर पुर मां है होंदा ते है चंदन दा बूटा पर हर जगह नहीं आउंदा हर जंगल दे च नहीं आउंदा। होंदा ते है केसर पर हर जगह नहीं आउंदा। सारी दुनिया दे च केसर स्पेन दे च आउंदा है कश्मीर दे च आउंदा है एक अद मुलक होर बाकी किधरे नहीं आउंदा। बड़ा बोके वेखिया गया है नहीं आउंदा। इधर हिमाचल दे च भी बोके देखिया गया नहीं होया। कश्मीर दे बाकी इलाके च भी बोके देखिया गया नहीं होया। बीच के देखिया गया नहीं होया। सिर्फ एक छोटा जिहा खिता हाईवे दे उत्ते कश्मीर नू जिहड़ी सड़क जांदी है उहदे उत्ते एक कस्बा पैंदा है पंपोश उत्थे आउंदा है और किधरे भी नहीं आउंदा। होंदे ते ने संत होंदे ते ने धार्मिक मनुख गुस्ताखी माफ हर शहर दे च नहीं आउंदे। होंदा ते है केसर हर जगह नहीं आउंदा। होंदा ते है चंदन हर जगह नहीं आउंदा। होंदे ते ने हीरे पर हर पहाड़ दी गोद दे च नहीं आउंदे, नहीं आउंदे। होंदे ते ने संत हर शहर दे च नहीं आउंदे। हर शहर दे च इंजीनियर होंदे ने डॉक्टर होंदे ने लॉयर होंदे ने साइंटिस्ट होंदे ने हर शहर दे च धनवान होंदे ने कारोबारी होंदे ने व्यापारी होंदे ने हर शहर दे च दार्शनिक फिलोसफर राजनीतिक होंदे ने हर शहर दे च संत नहीं होंदा भगत नहीं होंदा। हर शहर दे च रब नाल जुड़ी हुई आत्मा नहीं आउंदी। मैनू एक दफा फिर कहण देना हर शहर दे च इंजीनियर होंदे ने डॉक्टर होंदे ने लॉयर होंदे ने दार्शनिक फिलोसफर होंदे ने हर शहर दे च कलाकार होंदे ने हर शहर दे च राजनीतिक होंदे ने व्यापारी होंदे ने चोटी दे धनवान होंदे ने हर शहर दे च रब नाल जुड़ी हुई आत्मा नहीं आउंदी। चंदन तरना बन बन साधना पुर पुर माए एक चोटी दा व्यापारी बनना इतना औखा नहीं जितना ब्रह्म ज्ञानी बनना औखा। एक चोटी दा इंजीनियर डॉक्टर बन जाना साइंटिस्ट बन जाना इतनी वड्डी गल नहीं इतनी अकल दी गल भी नहीं जितनी अकल दी गल चाहिए धर्म नू समझण वास्ते। बड़ी मुशक्कत है मानसिक बड़ी मेहनत है मानसिक जिन्नी नाम दे आया गए मशक्कत गाल बड़ी घालना है बड़ी मेहनत है। तो खैर धार्मिक इकट्ठ होने गए कोई धर्म दी समझ रखदा होवे ऐसा सिलसिला बहुत घट आउंदा बहुत घट आउंदा। तो मुख्तसर मैं अर्ज करा धार्मिक जगत विच बस दो दी समझ चाहीदी है प्रभु दी ते गुरु दी। ते जे प्रभु दी समझ नहीं

किया सच देसा क्या पिछ बेसा क्या गंज कर्म क्या बन परमाय किया पिछ लोक क्या दि सो क्या तूत बरने के बेभूत करने के राजंग प्रभंग धर्मन तुझा क्या शोक बरने के।

रास रूपे कान है कलंकम प्रणास है समस्तल निवास है अगंजल गनी मै रजाय करी मैं समस्तल जो बंक साहेब के राह है के नरकम प्रणास है बहस्तल निवास है सर्वल गुवान है मेसुर वन है

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

फते पात तपामन भगत वशल करनान दान ज्योति स्वरूप दो जहाने आलम तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन गोद दे विच सज के बहुत ही अदब ते सत्कार दे नाल आप जी अमृत वेले दियां सवावां दा आनंद माण रहे हो। अमृत वेले तो लैके सतगुरां दे प्रकाश होए हन, उपरंत पंज पावन बाणियां दे नितनेम श्री आसा जी दी वार दे कीर्तन, छे पौड़ियां आनंद साहिब जी की अरदास, अखर वाधा घाटा महाराज सच्चे पातशाह जी भुल चुक माफ करनी, ए सारियां सवावां दा आप जी ने आनंद माणिया है। आए हुए पावन मुखवाक सतगुरु जी दे घर दे हैड ग्रंथी साहब जी दे पासों आप जी ने सरवण कीते हन। आओ संगत जी मन दी एकाग्रता बनाओ, आए हुए पावन मुखवाक साहब जी दी व्याख्या आपां सरवण करदे हां। जो ये पावन शब्द आप जी ने मुखवाक दे रूप दे विच सरवण कीता है, ये पावन मुखवाक तीसरे पातशाह धन धन श्री गुरु अमरदास साहब जी महाराज जी अपने पावन मुखार बिंद तो उच्चारण कर रहे हैं। धन श्री गुरु अमरदास साहब जी महाराज गोइंदवाल साहब संगतां नूं तार रहे सन। एक दिन अकबर बादशाह दा वजीर बीरबल, जड़ा बड़िया भारी कवितावां भी लिखदा हुंदा सी, ते जहांगीर बादशाह ने अकबर बादशाह ने अपने बीरबल वजीर नूं कहा कि जिहड़े बोधी वाले हिंदू हन उन्हां दे कोलो तू एक रुपया टैक्स लै लिया कर, तैनूं इह खुल छोड है। ते उस समय जिहड़ा बीरबल वजीर सी, इह जिथे जिथे भी बोधी वाले हिंदू रहिंदे सन उन्हां दे कोलों जबरी एक रुपया टैक्स लैंदा हुंदा सीगा। ते कुछ महाराज गुरु अमरदास महाराज जी दी नगरी दे विच गोइंदवाल साहब भी हिंदू रहिंदे सन, ये बीरबल आया है, ये सारे हिंदुआं नूं कठियां कीता है, कहिंदा कि अकबर बादशाह दी मैनूं आग्या है, तुसी अज तो मैनूं एक रुपया जिहड़ा है वो टैक्स दिया करना है। ये सारिआं ने फरियाद कीती, कहण लगे बीरबल असी तां आप गुरु अमरदास महाराज जी दे लंगर विच्चों प्रशादा पाणी छकदे हाँ, साडे कोले इन्नी माया कित्थों आ गई है वी तैनूं असी टैक्स दे दईए। असी तां आप जदों सानूं कोई लोड पैंदी गुरु अमरदास महाराज जी दे अग्गे जा के झोली अड्डदे हाँ। इन्हां नूं हजे गल्लबात ही हो रही सीगी कि अकबर बादशाह दा सुनेहा आ गया बीरबल दे ताई कि बीरबल तू छेती तो छेती जिथे है साढ़े कोले तू पहुंचना कर दिल्ली दे विच। ते उस समय बीरबल सारे हिंदुआ नूं यह गल कह के गया सुल्तान गोइंदवाल साहब कि मैनू हुण बादशाह दी आग्या आ गई है, मैं जदों वापस आवांगा तुहाडे कोलों यह सारा टैक्स लवांगा। उस समय जिहड़ा बीरबल से अकबर बादशाह दे कोले गया है, जाके कहन लगा बादशाह मैनूं दसो मेरे ताई की काम है। कहन लगे कि फौजां नूं लै जाणा कर, ते कुछ जिहड़े पहाड़ी इलाके हन उन्हां दे विच जाके फौजां ते हमला कर।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਰਬਲ ਸੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਣੀ ਲੋਕ ਸਨ ਯੂਸਫ ਬਾਈ ਅਰਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਲੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੋਦੇ ਸਨ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗਣਾ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੀਰਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਦੇ। ਬੀਰਬਲ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਗਈ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਆਏ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਰਬਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਤੋਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਕਮਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਸਹਾਈ ਬਣਦੇ, ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਣ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਖੋ

मैं आवेगा एकदम सतगुरु कहते आ जाओ नहीं जमया नहीं अजन्म है अमरन है जमया नहीं है तो फिर कैसे है सैभं संस्कृत का शब्द है स्वयं भू अपने आप तो प्रभू हो अपने आप तो प्रकट हो आप ही ने आप साजे हो आप ही ने रचे हो ना सैभं शंभू स्वयं भू पंजाबी रूप सैभं अपने आप तो आप ही होया है फिर सारा ज्ञान उसे तो आ रहा है वह जड़ा एक है वह गुरु है ज्ञान गुरु है ज्ञान सारा परमात्मा तो आ रहा है ज्ञान ही ते गुरु है ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम वे बहुत लगाओ सब कुछ जिथे परमात्मा तो आया है ज्ञान भी उसे तो आया है कोई गैर गंभीर कविता किसी कवि की नहीं आती परमात्मा की आती है कवि की पकड़ आ गई उदय पांडे समा गई कोई ज्ञान मनुख का नहीं आता सब परमात्मा का जब कोई कह देता है ज्ञान मेरा है उसे ज्ञान की सीमा बन जाती है जब कोई कहता है ज्ञान परमात्मा तो आया उ असीम हो जाता गुरु है प्रसाद दयालु है बख्शिंद है रहीम है रहमान है बख्शिंद है करुणाकर है दयालु है इथे तक मूल मंत्र मुख्तसर ते हुण आप शब्द सरवन करो हां जी

इस पंक्ति विच अरजोई है, बेनती है, सारा शब्द बेनती है, अरदास है। कीती हुई साधना, कीता होया जप तप, वही सफल है जो मनुख नू अरदास तक ले जाए, बेनती तक ले जाए। कुछ धर्म ते ऐसे ने जैसे ईसाई, भी चर्च क्यों जा रहे हो? प्रेयर करन जा रहे हैं, अरदास करन जा रहे, सिर्फ अरदास करन जा रहे। साढ़े च ऐसा नहीं, कीर्तन सुनन जा रहे हैं, कथा सुनन जा रहे हैं, गुरु दे दर्शन करन लई जा रहे हैं, सत्संगियां दे दर्शन करन जा रहे हैं, सेवा करन लई जा रहे हैं, पुन करन लई जा रहे हैं। ये सब कुछ कीता होया पुन, सुनिया होया कीर्तन, सुनी हुई कथा, इसका फल की है? अंदरों अरदास दा निकलना। वो अरदास फिर व्यर्थ नहीं जाती, बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास। ये कदों निकलती है? जप कर करके निकलती है, कीर्तन सुन सुन के निकलती है, कथा सुन सुन के निकलती है, पाठ कर करके निकलती है। उंज नहीं निकलेगी, उंज बथेरी अरदासा आउंदी अंत मनुख करता। कोई रस्मी अरदास, दीवान दी अरदास, दिल दी गहराई चो अरदास निकलती है, जप कर करके, तप कर करके, साधना कर करके, कीर्तन सुन सुन के, कथा सुन सुन के, बाणी पढ़ पढ़ के, पाठ कर करके, उंज अरदास नहीं निकलती दिल दी गहराई च। और जदों ये अरदास निकलती है फिर व्यर्थ भी नहीं जाती। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। दिल दी गहराई चो जड़ी अरदास निकली है खुदा तक पहुंचेगी। इसे नु गुरबाणी कहती है, बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास। सारे शब्द विच एक अरदास है, यक अर्ज असी अरदास कहने हैं, परशियन दे कहने ने अर्जोई करने, अर्ज करने, अर्ज करने, अर्जोई है। संस्कृत दे, हिंदी च कहने ने प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है। फारसी च कहने ने अर्ज करनी है, अर्जोई करनी है। गुरु नानक ने एक शब्द नो जन्म देता है, अरदास करनी है। ते अरदास दे जो मैं अर्थ समझे ने ते पढ़े ने, अर्जे दास्त हाथ जोड़ के अर्जोई करने, दस्त बस्ता हथानू जोड़ के अर्जोई करने, बेनती करने, प्रार्थना करने। सतगुरु कहंदे ने, यक अर्ज एक मेरी अर्जोई, एक मेरी प्रार्थना, एक मेरी अरदास। यक अर्ज गुफ्तम।

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट

तन कोई कृत कर रहे है उस विच मन नहीं है, संस्कार नहीं बनेगा। पर मन विचार कर रहे है, सोच रहे है, मानसिक कर्म चल रहे है, पावे तन कृत नहीं भी कर रहे है, ता भी संस्कार बनेगा। थोड़ा जहा ध्यान पूर्वक सुनना, संस्कार मानसिक कर्म नाल बनता है। तन कोई कृत कर रहे है उस विच मन शामिल है, संस्कार बनेगा। तन नहीं शामिल, मन कर रहे है, सोच रहे है, चिंतन कर रहे है, विचार कर रहे है, संस्कार बनेंगे। संस्कार मानसिक कर्म दे बनते, उस मानसिक कर्म दे भावे तन शामिल होवे भावे ना शामिल हो। जब तन नाल शामिल होता है तो कर्म कृत बन जाता है। लेकिन तन शामिल नहीं होया तो कर्म कर्म है, कृत नहीं बनया, कृत नहीं बनया। समाज कानून मनुख की कृत नु वेख दी है, मानसिक कर्म नु नहीं देख भी नहीं सकती। तुसी इत्थे सोचदे की पयो मैनू की पता, मैं इत्थे स्टेज ते बैठे या गुरुद्वारे बैठे होया की सोच रहा सी तुहानू की पता। मानसिक कर्म तक समाज दी कानून दी पहुंच नहीं है, कृत तक पहुंच है। जद ओ मानसिक कर्म जो विचार दे रूप विच आउंदा है, जद तन ते कृत दे रूप विच प्रगट आउंदा है, ओ समाज नू दिखाई देंदा है करदा की पिया, इहदी कृत की। ऐसा भी हो सकदा है कृत बड़ी चंगी कर रहा है, उस विच मन नहीं है, मन इनकारी है। ते मन इनकारी है ते फिर चंगी कृत क्यों कर रहा है? समाज लई कर रहा है, समाज चंगा चंगा आखेगा, लोकी चंगा चंगा आखणगे। समाज दे च रहना है तो कम से कम समाज चंगा चंगा आखे। बड़े ध्यान नाल सुनना, दुनिया भर दे आत्मदर्शी कहिंदे ने जो बहुत समाज दी दृष्टि चंगा बनन दी कोशिश करदा है, अक्सर देखिया गया परमात्मा दी नजरां च बुरा ही आउंदा, कुछ भी नहीं आउंदा, कुछ भी नहीं आउंदा, कुछ भी नहीं आउंदा। इनू शेख सादी साहब इंज कहिंदे ने, तू दुनिया दी निगाहां दे च बहुत चंगा होवे ते परमात्मा दी निगाह दे च माड़ा होवे, इस नालो ए बेहतर है कि तू समाज दी निगाह दे च माड़ा होवे, प्रभु दी निगाह दे चंगा होवे। इस नूं चुणना, मनुख दी ते सारी कोशिश ही है समाज चंगा रहना, जो समाज दे च है। जिस समाज तत छिन्न फैसला करदा है, रहना समाज दे च। कर्म जद कृत बनदा है उनू समाज देखदा है। हथां द्वारा कृत प्रगट होई, जबान द्वारा बोलना कृत दे रूप विच प्रगट होया, लोकी देखदे। पर मन की बोलदा पे अंदर समाज नहीं देखदा, देख भी नहीं सकदा। मन की सोच रहा है कानून देख भी नहीं सकता, समाज देख भी नहीं सकता। ऐसा भी हो सकता है तन शुभ कृत कर रहे है उस विच मन नहीं है, संस्कार नहीं बनेंगे। इस शुभ कृत दे अंदर संस्कार नहीं बन, ये लिखिया ही नहीं जाएगा। पावे दान कर रहे है, पुण कर रहे है, बाणी पढ़ रहे है, सेवा कर रहे है, मन नहीं है विच, इदे संस्कार नहीं बनेंगे। होर सुन लो, कुछ बुरा कीता है उस विच मन नहीं से, उदे भी संस्कार नहीं बनेंगे। हो गया बुरा, जे बाहरों भूल चुक बोल दे भी खरे अरमान, बोलिया बुरा है परमात्मा दी निगाह च खरा है, समाज दी निगाह च खोटा है।

धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, हक पराया नानका उस सुवर उस गाय, नहीं खाऊंदा होवेगा हिंदू गऊ, पर पराया हक खा रहे तो गऊ भी खा रहे, नहीं खाऊंदा होवेगा मुसलमान सुवर, पर पराया हक खा रहे तो सुवर ही खा रहे। हक पराया नानका उस सुवर उस गाय, एक देश दूजे देश का हक मार जाता है, बड़े वड़े वड़े देश जो छोटे देशों का हक खोल लेंदा है, सारी दुनिया च इस तरह चलता है, वड़ियां कौमां छोटी कौमां का हक खोल लेंदियां, वड़े मनुख छोटे मनुखां का हक खोल लेंदे, सुअर खांदे ने या गऊ खांदे ने और की है, अगर इस हिसाब नाल लोगे तो सुअर खांदे ने गऊ खांदे ने। हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, गुरु पीर हामा तां भरे जा मुरदार ना खाए, गुरु पीर हामी भर सकदा अगर मुरदार ना खावे, तो मुरदार की है, हिंदू लई गऊ खाना मुसलमान लई सुअर खाना प्राया हक मुरदार है, मुरदा है, ये तो मुरदा खाना है। औखे ना होना बगौर गहराई नाल देखोगे, वड़े वड़े देश छोटे देशों नू खा रहे ने, मुर्दे खा रहे ने, वड़ियां वड़ियां कौमां छोटियां कौमां दा हक मार जांदियां, वड़े वड़े मनुख छोटे मनुखां दा हक मार जांदे ने। जद किसे दा हक मार लिया तो मुर्दार ही खादा है और की खादा है, इसे नू हराम कहंदे ने, ये भी मैर्स कर दे। और महाराज कहंदे ने बड़े ने इतनी वड्डी सियाणप है, खांदे भी हराम ने, अगले नु कख भी नहीं पता चलता, खांदे भी मुरदार ने, अगले नु कुछ भी नहीं पता चलता, इतनी दृष्टि ते है अंधेरे च वेख सकदे ने, रोशनी च नहीं वेख सकदे। तो जो अंधेरे च वेख सकदा है रोशनी च नहीं वेख सकदा, गोगू है और कोई की है, गोगू है। संपत दौल झूल संग झोलत, माया मगन फेरत गोगना। सतगुरु ने उस प्रश्नकर्ता नु चुप करा दिता सी जिसने किया सी महाराज शब्द सारियां दे हिरदियां नु रोशनी नहीं देंदा, सूरज देंदा है, सूरज सारियां लई बार चानना कर देंदा है, गुरु दा शब्द सारियां दे हिरदे च प्रकाश नहीं करदा। फिर एक करोड़ा सूरजां वर्गा किस तरह होया, दो शब्द बर्दाश्त कर लेना, हाथ जोड़ के मैं माफी मंगा। घुग्गू थोड़े ने बहुत ज्यादा नहीं ने, पंछियां दे पशुआं दे ओ थोड़े जिया ने, जिन्हां नूं रात दी तारीकी दे ते दिखाई देंदा है, दिन दे चानने च नहीं दिखाई देंदा। मनुखी दुनिया च ये घुग्गू बहुत ज्यादा ने, बहुत ज्यादा ने, झूठ दे तेरा सामदा है, सच दे कोई नहीं, गंदे गीतां दे तेरा सामदा है, शब्द दे कोई नहीं, बिखे नाद दे तेरा सामदा है, रब्बी संगीत दे कोई नहीं। इन्हां दा तालमेल रात नाल बैठदा है, दिन नाल नहीं है। तो चूंकि रात नाल ताल बैठदा है, तो इन्होंने साधन भी उस तरह दे बनाए ने, क्लब ने, थिएटर ने, शराबखाने ने, वैशीहाले ने, जुए खाने ने, सब रात नूं खुलदे ने, इन्हां दे दरवाजे रात नूं खुलदे ने, इन्हां दी रौनक रात दी है, दिन दी नहीं है। लॉस एंजलिस दे च इक सज्जन मैनूं कहण लगा, उत्थे भी किधरे धन गुरु नानक देव जी महाराज का हुक्मनामा आया सी, ते उस दिन किधरे हुक्मनामे की कथा करनी सी, इतवार का दिन सी, राती होवन कालियां सुपे दासे वन, देहो बग्गा तप्पे घना कालियां काले वन। पहले पातशाह जी का वाक है, सूरज दिन चिट्टा चढ़े है, पर कालियां चीजां ते कालियां ने कोई चिट्टियां नहीं हुई, रात काली बोली है, बड़ी भयंकर मसया दी रात, पर चिटियां चीजां ते चिटियां ने कोई कालियां नहीं होईयां।
महाराज कहते ने करोड़ा भी दुष्ट मिल जान संत अपनी सजनता ही नहीं छड़ता, भावे कितनी मस्या की रात हो जाए कितनी कालक हो जाए उदी चिट्याई रहेगी। राती होवन काली।

0: वो चोर फकीर हो गया हसन दी संगत नाल। हालांकि उसनों चोर ते भी तरस आ रहा सी। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते कितनी काली रात होवे, चिट्टियां चीजा ते चिट्टियां ही रहिंदियां ने, कोई कालियां थोड़ियां हो जांदियां ना। और कितना ही चिट्टा दिन तपया होवे, चारों पासे उसने रोशनी चिटियाई फैलाई होवे, पर कालियां चीजा ते कालियां ही रहिंदियां ना। पंक्ति मैं थानू फिर सुनावा, राती होवन कालियां सुपे दा सेवन, देहो बग्गा तप्पे घना कालिया कालेवन। कितना भी सूरज चानना करे, कालिया चीजा कालिया ही रहिंदियां ने। कितनी रात कालख वंदे, चिटिया चीजा चिटिया ही रहिंदियां। जो कहिंदे ने माहौल ठीक नहीं, की करिए, माहौल जरा ठीक हो जाए फिर असी ठीक हो जावांगे, सब बहाने बाजियां ने। अंधेरी रात विच भी चिटियां चीजां चिटियां रहिंदियां ने। कितना ही माहौल खराब होवे, माहौल ते प्रहलाद दा भी ठीक नहीं सी, प्यो वैरी है ते जेल विच पाया होया ते चार चार दिन दा भुखा, वो जेल विच भी समाधि ला लैंदा, ऐसी घर विच भी नहीं ला सकदा। वो चार दिन दा भुखा है, सुरत शब्द नाल जोड़ लैंदा है, इत्थे भर पेट भी मनुख नहीं जुड़दा। उत्थे प्यो जान दा वैरी है, फिर भी वो प्रभु नाल जुड़िया होया है। इत्थे मां बाप दा लाड मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, फिर भी प्रभु नाल जुड़ना नहीं है। माहौल ते प्रहलाद दा भी ठीक नहीं है। माहौल राम दा भी ठीक नहीं है, बनवास है। रात रुखां तले कटना हुंदा है, दिन नूं किधरे भोजन नसीब होएगा कि नहीं, कि कंध मूल खा के गुजारा करना होएगा, जिंदगी ते कुछ भी नहीं है। माहौल ते ठीक नहीं है, लेकिन वो जिथे भी ने जंगल देच भी मंगल है। माहौल कृष्ण दा भी ठीक नहीं है, राजघराने दा लड़का है, पाल दे गुजर पे ने, ग्वाले पे पाल दे ना। शाही खानदान दा लड़का, ग्वाले पे पाल दे ना। ये सब बहाने बाजियां ने, जरा माहौल ठीक हो जाए अमृत भी छक लवांगे, जरा माहौल ठीक हो जाए एक कलगीधर पातशाह सी तेरी रहत बहत भी रख लेंगे, जरा माहौल ठीक हो जाए असी अमृत वेले भी उठांगे, जरा माहौल ठीक हो जाए असी नाम भी जपांगे। सब बहाने बाजियां ने, माहौल कभी ठीक नहीं होंदा, कुछ ना कुछ ते गड़बड़ रहिंदी है, सारी जिंदगी रहिंदी है कुछ ना कुछ ते होंदा है। सागर लहरां तो बिना नहीं आउंदा, जिंदगी समस्यावां तो बिना नहीं आउंदी, कुछ ना कुछ ते समस्या रहेगी। माहौल गुरु नानक दा भी ठीक नहीं, पिता मखट्टू कहिंदा है, ममता दी मारी होई मां कहिंदी है, कोई पुत्र है मेरा सुदाई है, सुदाई है। बेदी कहिंदे ने पोतना बेताला है, बेदी होंदे होया जनेऊ नहीं पहनदा, बेदी होंदे होया वेदां ते श्रद्धा नहीं रखदा, बेदी होंदे होया वेद नहीं पढ़दा। बेदियां दे घर जन्म। ब्राह्मण भी कहिंदे ने कुराई है, बूतना बेताल है। बगदाद देश ते मुसलमानां ने पत्थर भी मार दिते। माहौल तो ठीक नहीं है, बाबर ने जेल देच भी पा दिता है। माहौल तो गुरु अर्जन देव जी का भी ठीक नहीं है। वड्डा भिराव पृथ्वी चंद वैरी है, जान दा वैरी है। मसंद उसने सारे बागी कर ले, ते धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा घर घाट लुट लिया, अन्न लुट लिया, धन लुट लिया, बस्तर लुट ले, सारा साजो समान लुट लिया, चारों पासे पैरा बिठा दिता। अमृतसर दे कोई संगतां गुरु अर्जन देव जी तक पहुंचन भी ना। हुंदे ने इस तरह दे लोग, गुरु तक कोई ना पहुंचे और इस तरह के भी लोग होंगे ने गुरु साढ़े तक ना पहुंचे। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दरबार साहब जद गए ना मसंदा ने दरवाजे बंद कर दिते। गुरु दा घर गुरु लई बंद। गुरु तेग बहादुर साहब नु अंदर नहीं आन दिता मसंदा ने। पता है सतगुरु बाहर बैठे थड़ा साहब गुरुद्वारा आज भी मौजूद है। बाहर बैठ के दरवाजा बंद कर देता तुसी नहीं जा सकते। जब सच आ जाए ना तो फिर झूठिया नु कौन पूछेगा। तो झूठे नु डर होंदा है सच आवे ही ना आवे ही ना। करीबन करीबन इस तरह दे लोग इंज कह लो चर्च दे चो मस्जिद दे चो मंदरां च खुदा नु कढ छड़ दे हुंदे ने। खुदा तो बिना चर्च दी पूजा कर दे ने। भगवान तो बिना मंदरां दे च पूजा चलती है। बगौर मतलब करना ऐसा हुंदा है क्योंकि भगवान होवे तो फिर शैतान नु कौन पूछेगा। सच होवे तो फिर झूठ नु कौन पूछेगा। इतनी रोशनी हो जाए तो फिर अंधेरे किथे जान गए। शेख सादी ने तो कहानी लिखी है भई अंधेरा रोंदा पिटदा खुदा कोल चला गया ते आखन लगा खुदावन ताला एक तू मेरे जान दा वैरी बनाया है मैनू टिकन ही नहीं देंदा। सूरज मेरे पिछे लठ लैके पिया है ये तू मेरे लिए बनाया है मैनू टिकन ही नहीं देंदा किधर है। मेरा पक्का दुश्मन तुसी इसनों रोको मेरे नाल दुश्मनी ना करे मैनू टिकन देवे। कहानीकार शेख सादी लिखदा है खुदा ने सूरज नू तलब कीता आखिया अज अंधेरा मेरे कोल फरियाद लेके आया सी बड़ा रोया है बड़ा रोया तेरी शिकायत करदा सी। तू उस नाल क्यों वैर कमाना तू क्यों उस नाल दुश्मनी करदा है। सूरज ने हाथ जोड़ के आख्या खुदावन ताला मैं ते कदी वेख्या ही नहीं अंधेरे नू ते जिन्नू मैं वेख्या नहीं उहदे नाल कदी दुश्मनी मेरे मैं तो जानदा ही नहीं उसनों मैनू पता ही कोई नहीं मैनू तो नाम धाम का ही पता कोई नहीं। हे खुदा मैं क्यों उस नाल दुश्मनी कमावांगा। सच दे होंदियां झूठ रह नहीं सकता। इस वास्ते झूठ की पूरी कोशिश होंदी है दरवाजे बंद करो सच नहीं आना चाहिदा। हिरदे दे द्वार बंद करो सच अंदर नहीं आना चाहिदा। मंदिर दे दरबार बंद करो भगवान नहीं आना चाहिदा। गुरु तेग बहादुर साहब ले दरवाजे बंद कर दिते। इतिहास है सतगुर वापस जान लगे इते अमृतसर दियां मातावां ने रोक लिया नहीं तो जान लगे सन उन्होंने नहीं जान दिता। तो पता है कवि संतोख सिंह जी ने की लिखे है सारे अमृतसरियां लई नहीं ने। मैं अर्ज करें भाई संतोख सिंह जी दे बोल ए मसंद जो अमृत सरिए त्रिशन अगन के अंतर सड़िए। ए जो मसंद ने ए जो पुजारी तबका है ए जो धार्मिक तबका है ये तो त्रिशना दे सड़े हुए ने ये तो अंधेरे दे जीण वाले ने। माइया रब रजाइया एक कवि संतोख सिंह जी ने लिखे है सतगुरु दे मुखार बिन तो बोल निकले मातावां ने रोक लिया। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ना नहीं ते मसंदा ने ते बाहर कढ दिता सी। चारों पासे मसंदा ने अज पैरा ला दिता संगत गुरु तक ना पहुंचे। अन्न धन शस्त्र सब कुछ लुट लिया। पृथ्वी चंद ने माहौल तो ठीक नहीं है। जहांगीर भी वैरी है। पृथ्वी चंद जो कुछ कर रहा सी जहांगीर दी ताकत भी नाल सी क्योंकि जहांगीर नहीं चाहता सी गुरु घर दी शक्ति वध जाए ताकत वध जाए। और जो मैं तबलीग दा काम करना चाहना उहदे च कोई रुकावट खड़ी होवे वो नहीं चाहता सी। उहनू बहुत वड्डा दुख होया सी जद उहनू पता चलिया महान सूफी संत साई मिया मीर उन्हें अपना मस्तक गुरु अर्जन देव जी के कदमों ते रखे है। ये जहांगीर दी सोचनी पै गई बे इस तरह के पुरश दे होंदे मैं इस्लाम किस तरह फैलावांगा। मियां मीर जैसे झुक गए उत्थे। ਇਹ ਮੈਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਹੱਥ ਚ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਪਹਿਲੇ ਵੈਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸ਼ੈ। ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਜੋ 10-20 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਭਰ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪੈਰਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰਸਤ ਪਾਣੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਅੰਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਧਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਸਾਡੀ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਟਟੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮਤਾਂ ਕੁਛ ਲੱਭੇ, ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੇ ਬਣਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਲਈ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਭਰ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰਫ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਭੂਖ ਸੋਈ ਕਰ ਸੂਖਾ, ਸੋਗ ਹਰਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਜੋ ਜੋ ਹੁਕਮ ਭਇਓ ਸਾਹਿਬ ਕਾ, ਸੋ ਮਾਥੇ ਲੈ ਮਾਨਿਆ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਧਰੇ ਬੇਸਣ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤਵੇ ਤੇ, ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਠੀਕਰੇ ਦੇ ਚ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖੇ। ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਚੀਖ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀਆਂ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬੋਲ, ਅਮਰ ਕਲਾਮ ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੂਖੋ ਭੋਜਨ 91 ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਾਈ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਪੜਤਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਰੂਖੋ ਭੋਜਨ ਭੂਮ ਸੈਨ ਸਖੀ ਪ੍ਰੇਸੰਗ ਸੁਖ ਬਿਆਤ। ਇਹ ਸਖੀ ਤੂੰ ਰੋ ਨਾ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਅੰਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਧਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਵਸਤਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਦਾਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਰੁਖੋ ਭੋਜਨ ਭੂਮ ਸੈਨ ਸਖੀ ਪ੍ਰੇਸੰਗ ਸੁਖ ਬਿਆਤ। ਸੰਤ ਨਾ ਛਾੜੇ ਸੰਤਈ ਜੇ ਕੋਟਕ ਮਿਲੇ ਅਸੰਤ, ਮਾਹੌਲ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਤ ਆਪਣਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਤਨੀ ਮਹਿਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਾਜ਼ੇ, ਜ਼ਰਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਾ ਬੈਠੇਗਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕੇਗਾ। ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੰਗੋ ਜਦਲ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਈ। ਅਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਧਾਰ ਨੇ ਕਭੀ ਤੁਝਕੋ ਸੰਭਲ ਨੇ ਨਾ ਦਿਆ ਥਾ, ਆਰਾਮ ਸੇ ਪਹਿਲੂ ਕੋ ਬਦਲ ਨੇ ਨਾ ਦਿਆ ਥਾ। ਐ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੌ ਸਕੇ, ਕਾਂਟਾ ਦਿਲੇ ਪੁਰਖੋਂ ਸੇ ਨਿਕਲ ਨੇ ਨਾ ਦਿਆ ਥਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਇਧਰ ਕਦੀ ਉਧਰ ਅਦਾਵਤਾਂ, ਬਾਈ ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਵਤ, ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਅਦਾਵਤ, ਸੋਡੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਵਤ, ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਅਦਾਵਤ, ਧੀਰਮਲ ਦੀ ਅਦਾਵਤ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਅਦਾਵਤ ਹੀ ਅਦਾਵਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਬਿਹਾਰ ਆਸਾਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਭ ਲਪੇਟ ਦੇ ਚ ਆ ਗਿਆ। तो गुरबाणी दे स्वरूप धन गुरु ग्रंथ साहब दे स्वरूप बहुते चाहिए ने। धीर मल को मंग की थी ताकि इस दे उतारे करवाई गए। फिर ओ बीड़ जो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने लिखवाई ते भाई गुरुदास जी ने लिखी, पता है धीरमल ने की आख्या, जे वाकई गुरु नानक दी गद्दी दे वारस हो तुसी तो खुद उच्चारण कर लो, मैं नहीं देने, ते जे सूर बीर हो तो मेरे नाल जंग करके वेख लो, जे तुसी सूर बीर हो तो युद्ध करके वेख लो, जंग करके वेख लो, ते जे गुरु नानक दी गद्दी दे वारस हो तो खुद उच्चारण कर लो, मैं नहीं देने, दोहां दे जिहड़ा रस्ता चुनना ने चुन लो, मैं किसी कीमत पे भी नहीं देने, युद्ध करना है तो युद्ध करके वेख लो, जंग करके वेख लो। धीरमल कोल भी फौज सी और लड़ाक बिरती उसकी है ही सी, सतगुरु ने मुनासिब नहीं समझिया धीरमल नाल युद्ध करना, वरना बड़े बड़े युद्ध होए ने पर धीरमल नाल युद्ध करना धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने मुनासिब नहीं समझिया। दमदमा साहब दिच बैठे ने मौज दिच कागज मंगवाए, कलम अपने हथों दिती मनी सिंह नो, आखिया सतगुरु दे स्वरूप धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे स्वरूप तैयार करने ने, सिखी दा दायरा वध गया, बाणी दा पाठ थां थां ते हो गया, गुरबाणी दे स्वरूप दे दर्शन थां थां ते होवन। कहिंदे ने तीन महीने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उच्चारण कर दे गए, भाई मनी सिंह लिख दे गए। ये पहली बीड़ जो करतारपुर दी अजकल जो रामसर दिच लिखी गई ते करतारपुर दिच मौजूद है धीरमलिया दे कोल, इहदी लिखारी भाई गुरदास जी सन, उच्चारण करता गुरु अर्जन देव जी। यह जिहड़ी बीड़ प्रकाशमान है सारी दुनिया च, इहदे उच्चारण करता धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, लिखारी भाई मनी सिंह ने, लिखण वाले भाई मनी सिंह ने। करतारपुर की बीड़ ते इस बीड़ दे बस थोड़ा जिहा अंतर है, उस दे गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी ने, इहदे च सतगुरां ने गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी चढ़ाई है और आप सुन के हैरान होवोगे, कदी मौका मिले तो दर्शन भी कर सकते हो करतारपुर जाके, जिथे जिथे तुसी गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी वेखदे हो ना हुण, इत्थे इत्थे उत्थे पन्ने खाली ने उस बीड़ दे च, करतारपुर की बीड़ दे च वो पत्रे खाली पए ने, वो जगह खाली पई है, दो दो पन्ने एक एक पन्ना खाली पिया, क्योंकि इतनी इतनी बाणी है गुरु तेग बहादुर साहब की, ये पन्ने खाली पए ने। हुण तो बहुत कठिनाई नाल दर्शन कराते हैं, क्योंकि श्रोमणी कमेटी ने मंग कर ली सी भी तोशेखाने च रखी है, सारिया नूं खुले दर्शन हो नहीं दिते उन्होंने, उदों कलगीधर नूं नहीं दिती तो हुण पंथ नूं की देणगे, ये भी महरस करते हैं। उदों गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज मंगते रह गए नहीं दिती, तो हुण पंथ मंगदा रह गया नहीं दिती। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, मनी सिंह ने इत्थे शक कीता, महाराज बोलते थोड़े भी ने, बचन अमृतमई ते थोड़े भी ने, बीड़ तुसी संपूर्ण करा ली अपनी बाणी, नहीं मनी सिंह असी जो लिखाया है उहदे च इतिहास है, 24 अवतारां दा इतिहास है, सतगुरु दा अपना इतिहास है, अब मैं अपनी कथा बखानो तब सादत जय बिद मोयानो, मनी सिंह असी अपनी कथा परमात्मा दी कथा दे च नहीं लिखनी, गुरु ग्रंथ साहब दे च परमात्मा दी कथा, इस परपंच में साचे नाम की वडाई, मत को धरो गवाना, किसे गुरु दा इतिहास नहीं है, किसे पातशाही दा इतिहास नहीं, गुरु नानक किथे प्रगट होए, कदों प्रगट होए, उन्हां दे मां बाप कौन सन, पत्नी दा की नां सी, बच्चे कितने सन, गुरु ग्रंथ साहब दे च नहीं है, कदों ज्योति ज्योत समाए, नहीं है, इतिहास नहीं है, निरोल ब्रह्म ज्ञान है, निरोल परमात्मा दा ज्ञान। खैरे में विचकार गल आ गई, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे ने सूरज सारिआं नूं चानण नहीं देंदा, उल्लू नूं चानणा नहीं मिलदा, गुग्गू नूं चानणा नहीं मिलदा, पंछियां विच कोई कद गुग्गू थोड़े ने जो गुग्गू ने, मनुखी दुनिया च बहुत ज्यादा ने, बहुत ज्यादा है। गुर शब्द दे चानने विच कुछ दिखाई देवे, गुरबाणी दी रोशनी च कुछ दिखाई देवे, इतनी सूझबूझी कोई नहीं। मन रे संसार अंध गहरा, एक ते मनुख दुनिया च अंधेरा है, अचेत है, दूसरा अंध है। अपना अचेतपना देख सके इतना बोध भी कोई नहीं। असंख मूरख अंध घोर, कोशिश ते मेरी सी इस पौड़ी दे पूरे अर्थ मैं थोड़े सामने करदा, कल करांगे ते थानू हुण लेट भी ना करिए। असंख मूरख अंध घोर, अंधेरे दा जीवन, वो चानने दा जीवन सी। असंख जप असंख भाव, और इस चक्कर च ना पैना, गोगो ही अंधेरे च आउंदे ने, बहुते मनुख अंधेरे च ने। क्लब नाल तालमेल बैठ सकदा है, गुरुद्वारे नाल नहीं। शराबखानिया नाल तालमेल बैठ सकदा है, अमृत दे सोमिया नाल नहीं। जुए खानिया नाल वैश्यालिया नाल संबंध जुड़ सकदा है, गुरुद्वारिया नाल नहीं, मंदिरां नाल नहीं। अक्सर प्रभात दे समय दरवाजे खुलदे ने भारत विच मंदिरां दे गुरुद्वारिया दे, रात दे समय दरवाजे खुलदे ने शराबखानिया दे वैश्यालिया दे। जद मैनू लॉस एंजलिस दे चो सिंह कहण लगा, गैनी जी थानू रात दी जिंदगी दिखाई गई, मैं कहा तू देखदा होना है? कहने हां। तो मैं कहा मैं अज कथा ही ते सुनाई है, रात दी जिंदगी ते उल्लूआं दी आउंदी है, उल्लू मैनू बनाना ही ते लै जा। कहंदे गैनी जी तुसी ते परोक्ष रूप दे च मैनू उल्लू आखे, परोक्ष कहंदे ने जिवें बैकग्राउंड दे च पिछे खड़े हो, संस्कृत दे शब्द है परोक्ष, पिछे छुप के। तुसी ते मैनू उल्लू कह दिता, मैं कहा तुसी मैनू उल्लू बनांदे से, मैं की करा फिर, तुसी इस तरह कह रहे से। लॉस वेगास एयरपोर्ट देते प्लेन बदलना सी, मैनू याद है इथों ही गया सी मैं लॉस एंजलिस, इथों एयरपोर्ट ते भी जुआ चल रहा, हद हो गई, सारा शहर ते जुआरियां दा है भी। चलो एयरपोर्ट तो बाहर निकल के खेड लिया, उत्थे भी खेड देना, उत्थे बैठियां बैठियां भी जुआ चल रहा। रात दी जिंदगी, जुए खानिया दे दरवाजे रात नू खुल देन, वैशालियां दे दरवाजे रात नू खुल देन, शराबखानिया दे दरवाजे रात नू खुल देने, थिएटरां ते क्लबां दे दरवाजे रात नू खुल देन। जिन्हां दी जिंदगी रात वर्गी है उन्हां दा उत्थे तालमेल बैठदा है, उत्थे तालमेल बैठदा, उत्थे दिखाई देंदा है। गुरुद्वारे ते शायद इन्हां दी अखां बंद हो जाणगियां, कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। उन्हां बारे मेरे पातशाह ये पौड़ी उचारण करदे ने, एक चानण पख एक अनेरा पख, एक दिन दी जिंदगी एक रात दी जिंदगी। वो जो रात दी जिंदगी है जिसका खुलासा धन गुरु नानक देव जी महाराज इस 18वीं पौड़ी च करनगे, कल आप जी के सामने रखांगे। इत्थे समाप्ति, बच्ची ने एक शब्द पढ़ना, नाले आनंद साहब का पाठ ते समाप्ति। सारिआं दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद, बोल चुक दी छवा, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, 2990152 ਸਟਰੀਟ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, 4 ਪਾਉਂਡ ਇੰਡੀਕਨ ਚਿੱਟੇ ਛੋਲੇ 3.99 ਦਾ ਬੈਗ, ਵੱਡਾ ਜੰਬੋ ਸਾਈਜ਼ ਗੋਭੀ ਦਾ ਫੁੱਲ 2.98 ਦਾ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੀਜ ਵਾਲਾ ਹਦਵਾਣਾ 4.99 ਨੂੰ ਈਚ।
3: जिंदगी दे हिसाब किताब वांग बिजनेस दा हिसाब किताब भी बहुत औखा है। पहला मेनू भी यही लगदा सी, पर जदों मेनू बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां बारे पता लगा, ओदो तो मैं टेंशन फ्री हो गया। जिन्हां नूं है 30 साल तो भी वध दा तजुर्बा, टैक्स पेपर फिल करने होन, बुक कीपिंग होवे या किसी भी तरह दा फॉर्म भरवाना होवे, तां अज ही संपर्क करो बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां नूं। कॉल 604-325-8370 604-325-8370।
4: 604-351-5111 गुरदयाल सिंह बाद

0: फ्रूटी कैना दी नवी लोकेशन साउथ सरी विच खुल गई है 2990152 स्ट्रीट। इस हफ्ते दे स्पेशल हन 17 जुलाई तो 22 जुलाई तक 4 पाउंड इंडिकन चिट्टे छोले 399 दा बैग, वड्डा जंबो साइज गोभी दा फुल 298 दा एक, अते बिना बीज वाला हदवाना 499 नु ईच।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudel Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudel Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudelbaudgroup.com.
5: ओए जो दिस है अंबर तारे किन ओए चीते।